0: नगन फिरत जो पाइये जोग,
1: बन का मिरग मुकत सब होग।
2: गुरबाणी बार बार समझाए कह रहे ने पासा, जे इस तरह जोग जिस परमात्मा इस तरह मिल जाता ते मिरग भी इस तरह नहीं जंग जंगल के घूम रहे हैं फिर रहे हैं। कहते हैं

गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्होंने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ट जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुणांदे सी लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है ओ सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मर्दानिया चल गरीब नवाज पातशाह सत बचन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नू आज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन लक्ष्मी

अपनी शक्ति नाल वो जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन वो लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने भगतियां गई भगत भले, भगतियां गई भगत भोले। जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिले विच लोग माया पा रहे ने वो लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

हे नानक जी, ये गल दसो, एक पासे ते तुसी उदासी पेख तारिया पे, एक पासे तोड़े बाल बच्चे तोड़ा परिवार तुसी गृहस्थी हो,

फिर उन्हों के घर मंगन जाई बिन दिते किच हाथ न आई ए सुन बचन जुगीसरा पैसा कहने हूं झगड़ा कर लगे ने गुरु नानक नु डराउन लगे ने अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता ए सुन बचन

हे नानक जी तुहाडी बड़ी महिमा सुनी मेरी सुनी नहीं वेख भी लई है तुसी शक्तियां दे मुजस्मे हो और कुछ सानू भी विखाओ सिद्ध बोलन सुन।

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नू पता लगा के वड्डा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उना ने अपने एक सेवक नू अपने चेले नू एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़

एक लोभी पुरुष पदार्था विखे बड़ा लोभ करदा सी, पर लोकां पत्यान वास्ते प्रभु दा सिमरन भी बड़ा करना कि मैं बड़ा भगत ज्ञानी हां, क्योंकि हजूर दा वचन है जो जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जाने हो कथनी करता व्यापारी बसुधा ज्यों बसता, साध संग जिन हो मैं मारी नानक तांकू मिले मुरारी। भाई रब दी प्राप्ति तो उन्हां नूं ही होंदी है जो निम्रता दे नाल निष्कामता दे नाल मन करके परमेश्वर दी भगती करदे हन। ये लोकां नूं पत्याउण वास्ते विखाउण वास्ते बड़ियां मालां फेरदा है, बड़े सिमरन करदा है, बड़ियां बगल समाधां ला पैंदा है। ते बाबा फरीद जी कहंदे हन कि ये भगती भाई परवान नहीं, उसके इस पखंड नूं देख के ता फरीद जी ने यह शलोक उचारण किया, फरीदा जां लब ता नेहो क्या, जिथे लोभ है उत्थे नेहो क्या, उत्थे परमेश्वर दा प्यार की होना है, नेह की होना है, उत्थे ता केवल माया दा ही प्यार है। लब ता कूड़ा नेहो किचर घत लंघाइए छप्पर टुटे मेहो। हे भाई जे पदार्थां दा लोभ है तां प्रभु विखे सच्चा प्यार किवें हो सकदा, जे खुदा दा नेहो प्यार है तां पदार्थां दा लब करना तां फिर कूड़ा है, क्योंकि दो गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। जे प्रेम है तां लोभ नहीं, जे लोभ है तां प्रेम नहीं। इसलिए भाई जे प्यार करना है ता सच्चा प्यार कर गुरु दे नाल, ऐसे लेख ना लिख जदों तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे दरबार विच जावे ते तैनू अखां नीवियां करनियां पैन, शर्मिंदियां होना पवे। इसलिए

अब तो तेरे हृदय विच है, वो तो वस रहा है तेरे हृदय विच, ते तू उसनू जंगलां विच लभदा फिरना, रब जंगलां विच तो नहीं रहिंदा।

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा। ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भिज ना जावे तो फिर तेरा प्यार कदा होया। तां फरीद जी कहंदे आ ना गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला ता भिजे कंबली रहा ता टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो। एवी तां उदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उदे हुकम दी अदूली करके जे सत संगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख

एक रजोगुणी पुरुष जो फरीद जी दे पास आया, मथा टेकिया ते मथा टेकन लग्या ओ पूरी तरह ना चुकिया, भई मते पग ना मैली हो जावे। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। तब बाबा फरीद जी कहंदे न, भई वेखो इसनू पुलावा पग दा है, भई मते पग मैली ना हो जावे मथा टेकन लग्या। पर इस अणभोल पुरुष नू ए नहीं पता भई एक दिन ए सिर भी जिस सिर ते पगड़ी बनी है इस सिर नू भी मिट्टी ने ही खा जाना है। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु।

कोई दाहिरा नहीं। जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी, आख्या ओ हिरदा तां शमशान भूमिका है। उस हिरदे विच तां भूत प्रेत वस रहे हन, जिथे साईं दे मिलन दी शिक नहीं आवसी। जेड़ा सिर गुरु दे अगे नहीं चुकिया, ओ सिर कादा होया। जो सिर साईं नाने में सो सिर दीजे डार, आख्या नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। ऐसे हृदय नू जला दे, ऐसे शरीर नू छड़ के सुआ कर दे, जिस शरीर विच वाहिगुरु दे मिलन दी सिक नहीं आवसी। क्योंकि ए सुल्तान भगती है बैराग, मालक दे याद विच जुड़ के भजन विच जुड़ना सिमरन करना ए सुल्तान भगती।

धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर फरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में ए राग सिंधी आसा है बसाओ भाई।

कर आया प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाक शुमार बजाया गुरमुखान प्रतीत है हर जियो मन मुख पर भुलाया हर जी।

इच्छा है जो गुरु रूप से तो में खुश हो आप पैदा कर रहे हो फिर की तो समाप्ति है जन्म चलो मार्ग को मिटे भाव जब भी है सारे ज्ञान से सर्व

0: से अर्थ सत तीर्थ परस किए, जैसे अर्थ सत तीर्थ परस किए, युग चार चलो कैलाश
1: जिना गुरमुखा दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरनाथ जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत विच बह के जपते हैं सतनाम, संगत विच बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अर्थ सत तीर्थ परस

0: सतगुर कोट पहना आगे हुए लेत है।
1: तू एक कदम सतसंगत वाले चलना है ते गुरु तैनू करोड़ा कदम अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची है। किन्ना कदम से लैण आंदा कदों गुरु लैण आंदा है। साहब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जै मार्ग के गने जाए ना कोसा हर का नाम संगत। तू गुरु वल एक कदम रखता है गुरु तैनू करोड़ा कदम अगों लैण लई आ रहा है। क्यों ये मेरा है ये मेरे पासे आ रहा है। इसे लई साहब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नू बना ओ तेरा सच्चा मित्र है जेड़ा इथे भी ते दरगाह विच भी आके भाई ये मेरा है भाई इस दा हिसाब मेरे पासों दा। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा। ऐसे गुरु तो सदके जाए ऐसे गुरु तो बलिहार जाए। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है।
2: काहे को दौलत है

मेरिया दोनों लता नहीं है, इसलिए मैं हथा दे सहारे ही जाता हां। बी एडा धनवान मैं नहीं, कोई हो जा साधन।

उस मालिक दी रजा दे विच रह जे दुख दिंदा है ते सत करके मनी जा। भल है पावे सो भला जो मालिक नू पौंदा है।

देश है परदेश है तेरा शरीर भावे कितनी भी दूर बैठा होवे पर तेरा मन गुरु दे चरणा विच होवे तेरा मन गुरु दे चरणा विच जुड़िया रहे ए उत्तम मंग है कहो नानक तिस सब

हान होवे लाभ होवे हुण तैनू कादी चिंता है, हुण चिंता गुरु नू है। तू तो बै कर चुके है, ए तन बेची बै करी, अपना मन बै कर दे गुरु दे, अर्पण कर दे, ते फिर गुरु जो करावेगा वो भला ही होवेगा, गुरु जो कराएगा परपकार ही होवेगा। ते जिन्हां ने मन गुरु दे अर्पण नहीं किया, ओ मन दे मगर लग के हर वेले दुखी हां। जब लो पोट उठाई चले तब तक दाम भरे, छिड़ते हंकार दी पंड होवे, मसूलिया मसूल ले बिना अगे लंघन नहीं देंदा। ते जे पोटी तेरे सिर ते ना रही, ओ पोट तू गुरु दे अर्पण कर देती, ता हुण लंघ जा तेरे कोलो कोई लेखा नहीं पुछ रहा। आ सिर ते पोटली चुकी होवे, मसूलिया मसूल ले बिना लंघन नहीं देंदा। ते जे पोट नहीं है लंघ जा। इसे तरह जिन्हां ने हंकार रूपी पंड अपना मन अपना आप गुरु दे अर्पण कर देता है, फिर जिनको कृपा करी जग जीवन हर उड़तारियो मन मांझा, धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। जदों तेरे सिर ते हंकार दी पांडी नहीं है, पाप पुन करन वाला जो मन है तू गुरु दे अर्पणी कर देता है, फिर हिसाब कदा। जब लो पोट उठाई चले तब तक दाम भरे, पोट डार गुर पूरा मिलिया ता नानक सुख ले। आख्या पोटली नू गुरु दे अर्पण कर दे ते फिर सुख ही सुख है, दुख किस गल दा हुंदा है। हजूर कहंदे दुख साडी होमै हो है, होमै जो है ए साडे दुखां दा कारण है। खुदी मिटी तब सुख भए, खुदी मिट गई फिर सुख ही सुख है, फिर आनंद ही आनंद है। पर ऐसियां शुभ विचारां गुरु कियां किन्हां दे हिरदे विच आके बैठदियां हन, जिन्हां दे उत्तम भाग हन, जिन्हां दे चंगे मस्तक दे भाग हन। नहीं ते कई वेरा मनुख नूं चंगा कोई फुरना बने ते मन कहिंदा की लैणा तू सतसंग विच जाके, की लैणा तू सेवा करके, की लैना तू किसे दा भला करके, तू अपना बाल बच्चा पाल, अपना घर बना, अपना पेट पाल। ते भाई अपना तो पशु भी पर लैंदे हन पेट, अपने बाल बच्चे दी पालना तो सारी प्रकृति कर रही है, पर जे तू देश कौम गुरु दे दर दी सेवा नहीं कीती तां तेरा आउना सफल ना हो सकिया। इसलिए ये चंगियां विचारां जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू इस शब्द विच बख्शिश कीतियां हन, ओ हन कि भाई हर जस गुर ते मांगना, गुरु दे चरणा विच आके नाम दी दात मंगया करो। जिथे नाम है उथे सबो कुछ है, जिथे नाम नहीं उथे कुछ भी नहीं है।